है सिद्दीक अकबर हमें जान से प्यारा। नबी पे वो तन मन से हरदम फिदा था, अस्हाबे नबी में वो सबसे जुदा था, वफा ही वफा था वो सारा का सारा है सिद्दीक अकबर हमें जान से प्यारा। वो अखलाक व अतवार का एक समंदर, शुजाअत के मैदान का एक कलंदर है, मिसले कमर चार सू आशिकारा है सिद्दीक अकबर हमें जान से प्यारा।